0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजी तुजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: इस घंटे की मुख्य खबरें। Башқористон ки упрадан мантрики рашта санграла мета джегер раджатал ки векаса чернока авлокан кия Шангай сайока сангатан ки невеша форме таджикистан ки невеша сар простут ки еге Виана ме опека форм ки пенала санват ме таджикистан ки джал видео так шамта प्रस्तुत किए गए और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। बशकरिस्तान गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग ऊर्जा और नवाचार मंत्री अलेक्सेंडर शेल्दायेव जो कार्यकारी यात्रा पर ताजिकिस्तान गणराज्य में आए हुए ने ताजिक लोगों के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत से परिचित होने के उद्देश्य से ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया। अतिथि के लिए संग्रहालय पहरामन का आयोजन किया गया, जिसके दौरान अलेक्सेंडर शेल्दायेव ने प्रदर्शनी पक्षों में दुर्लभ वस्तुएं, मूल्यवान प्रस्तावक खोजे के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के नमूने तथा ताजिकों के हजारों वर्षों पुराने सभ्यता की उपलब्धियों का अवलोकन किया। साथ ही उन्हें ताजिक राज्यत्व के गठन और विकास के मौके, चरणों, सांस्कृतिक उपलब्धियों, कला और लोक शिल्प के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अंत में अलेक्सेंडर शेल्दायेव ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रदर्शनी व्यवस्था और कक्षों के प्रस्तुतिकरण के उच्च स्तर पर संतुष्ट व्यक्त किया और अपने अनुभव मनाद अतिथि पुस्तक में दर्ज किया। वियना में ताजिकिस्तान और विश्व बैंक के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास के संबंधों पर चर्चा हुई। 23 जून को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में ताजिकिस्तान के वित्तीय मंत्री फजीद्दीन खहोरजोदा और ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक उनाना बायोर्ट के साथ बैठक की। बैठक में ताजिकिस्तान और विश्व बैंक के बीच मौजूदा सहयोग के स्थिति और भविष्य के संबंधों पर विचार विमर्श किया गया। ताजिक पक्ष ने ऊर्जा, परिवहन, कृषि और बजाद समर्थन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के निरंतर सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने ताजिकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक परियोजना रोगन जल विद्युत संयंत्र के निर्माण और इस महत्वपूर्ण परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भागीदारी पर भी चर्चा की। वियना में ओपेक फोरम के पैनल संवाद में ताजिकिस्तान के जल विद्युत क्षमता प्रस्तुत की गई। ताजिकिस्तान के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा ने कहा कि देश जल विद्युत संसाधनों के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। वर्तमान में 500 मेगावाट क्षमता वाले 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है और देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ताजिकिस्तान का मध्य एशिया के एकीकृत ऊर्जा प्रणाली से पूर्ण जुड़ाव अतिम चरण में है, जैसे क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग मजबूत होगा। साथ ही ये ताजिकिस्तान में बनाते हैं, लेकिन ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से इन पर असर बढ़ा है। इसलिए जल संसाधन के साथ प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई है। बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के निवेश फोरम के दौरान ताजिकिस्तान के निवेश संभावनाओं, आर्थिक सुधारों और निवेश माहौल के बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को प्रस्तुत किया गया। ताजिकिस्तान राज्य निवेश और राज्य संपत्ति प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुल्तान रहीमजोदा ने कहा कि स्को क्षेत्र आर्थिक और निवेश सहयोग को मजबूत करने, व्यापार बढ़ाने और राजनीतिक साझेदारी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर दिया गया कि उपलब्धि अवसरों का प्रभावी आयोग के निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे के विकास और संयुक्त उत्पादन परियोजना के लिए आवश्यक है। हरामे ताजिकिस्तान में निवेश के लाभ और अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही आर्थिक सुधारों और निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के सरकारी प्रयासों पर बेहद चर्चा की गई है। कार्यक्रम के दौरान समिति प्रमुख ने स्को सदस्य देशों और आर्थिक और निवेश अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, जिन में आर्थिक सहयोग को मजबूत करते प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नए संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। प्यारे वालों, ये था समाचार। हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हैं, हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजी तुजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: इस घंटे की मुख्य खबरें। Башқаристан кеп прадонмантри ке рашта сангра аламета джегер раджатав ке векаса чарнока авлокан кеа. Шангай сайока сангатан ке невеша форме таджикистан ке невеша сар прастут киеге. Виана ме опека форм ке пейнала санвадме таджикистан ке джалведю так шамта. प्रस्तुत किए गए और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। बशकरिस्तान गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग ऊर्जा और नवाचार मंत्री अलेक्सेंडर शेल्दायेव जो कार्यकारी यात्रा पर ताजिकिस्तान गणराज्य में आए हुए ने ताजिक लोगों के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत से परिचित होने के उद्देश्य से ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया। अतिथि के लिए संग्रहालय पहरामन का आयोजन किया गया, जिसके दौरान अलेक्सेंडर शेल्दायेव ने प्रदर्शनी पक्षों में दुर्लभ वस्तुएं, मूल्यवान प्रस्तावक खोजे के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के नमूने तथा ताजिकों के हजारों वर्षों पुराने सभ्यता की उपलब्धियों का अवलोकन किया। साथ ही उन्हें ताजिक राज्यत्व के गठन और विकास के मौके, चरणों, सांस्कृतिक उपलब्धियों, कला और लोक शिल्प के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अंत में अलेक्सेंडर शेल्दायेव ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रदर्शनी व्यवस्था और कक्षों के प्रस्तुतिकरण के उच्च स्तर पर संतुष्ट व्यक्त किया और अपने अनुभव मनादा अतिथि पुस्तक में दर्ज किए। वियना में ताजिकिस्तान और विश्व बैंक के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास के संबंधों पर चर्चा हुई। 23 जून को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में ताजिकिस्तान के वित्तीय मंत्री फजीद्दीन खहोरजोदा और ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक उनाना बायोर्ट के साथ बैठक की। बैठक में ताजिकिस्तान और विश्व बैंक के बीच मौजूदा सहयोग के स्थिति और भविष्य के संबंधों पर विचार विमर्श किया गया। ताजिक पक्ष ने ऊर्जा, परिवहन, कृषि और बजाद समर्थन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के निरंतर सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने ताजिकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक परियोजना रोगन जल विद्युत संयंत्र के निर्माण और इस महत्वपूर्ण परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भागीदारी पर भी चर्चा की। वियना में ओपेक फोरम के पैनल संवाद में ताजिकिस्तान के जल विद्युत क्षमता प्रस्तुत की गई। ताजिकिस्तान के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री दलेर जुमा ने कहा कि देश जल विद्युत संसाधनों के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। वर्तमान में 500 मेगावाट क्षमता वाले 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है और देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ताजिकिस्तान का मध्य एशिया के एकीकृत ऊर्जा प्रणाली से पूर्ण जुड़ाव अंतिम चरण में है, जिससे क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग मजबूत होगा। साथ ही ये तजिकिस्तान में बनते हैं, लेकिन ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से इन पर असर बढ़ा है। इसलिए जल संसाधन के साथ प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई है। बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के निवेश फोरम के दौरान तजिकिस्तान के निवेश संभावनाओं, आर्थिक सुधारों और निवेश माहौल के बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को प्रस्तुत किया गया। तजिकिस्तान राज्य निवेश और राज्य संपत्ति प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुल्तान रहीमजोदा ने कहा कि स्को क्षेत्र आर्थिक और निवेश सहयोग को मजबूत करने, व्यापार बढ़ाने और राजनीतिक साझेदारी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर दिया गया कि उपलब्धि अवसरों का प्रभावी आयोग के निवेश आकर्षित करने, बुनियादी ढांचे के विकास और संयुक्त उत्पादन परियोजना के लिए आवश्यक है। हरामे तजिकिस्तान में निवेश के लाभ और अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही आर्थिक सुधारों और निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के सरकारी प्रयासों पर बेहद चर्चा की गई है। कार्यक्रम के दौरान समिति प्रमुख ने स्को सदस्य देशों और आर्थिक और निवेश अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, जिन में आर्थिक सहयोग को मजबूत करते प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नए संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। प्यारे वालों, ये था समाचार। हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हैं हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: Vartman Gadnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Parnazar.
1: Radio Avazi Tajiki Hindianubahak se 105.5 FM. नमस्कार प्रेषित तो आप सुन रहे हमारे विशेष कार्यक्रम राष्ट्र एकता शांति और विकास के नैनव आज के इस कार्यक्रम में हम राष्ट्र एकता के महत्व उसके शक्त तथा देश के शांति स्थिरता और प्रगति में उसके अमूल्य योगदान पर चर्चा करेंगे आइए एकता भाईचारे और आपसे सम्मान के इस संदेश को आएंगे बढ़ाए और एक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए नमस्कार प्रेषित हो आप सुन रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम राष्ट्र एकता शांति और विकास के नैनव आज के ऐसा कार्यक्रम में हम राष्ट्र एकता के महत्व उसके शक्ति तथा देश के शांति स्थिरता और प्रगति में उसके अमूल्य योगदान पर चर्चा करेंगे आइए एकता भाईचारे और आपसे सम्मान के ऐसा संदेश को आएंगे बढ़ाए

0: सुदृढ़ करने का आधार बन जाती है। यह उदाहरण एकता में विविधता के विचार से गहराई से जुड़े हुए है, जो विभिन्न संस्कृतियों के शांतिपूर्ण से ऐसे तत्व के महत्व को रेखांकित करती है। शांति और राष्ट्र एकता ऐसे शब्द है जो सदैव मन को आकर्षित करते हैं और लोगों को गहन चिंता के लिए प्रेरित करते हैं। शांति कार्य है कि मेल मिलाप बुद्धिमत्ता परस्पर एक समाज और शांतिपूर्ण जीवन के इच्छा। वही एकता कार्य है साधना एक उद्देश्य के लिए संगठित होना तथा राष्ट्र और समाज के प्रति निष्ठावान रहा। एकता समाज के सदस्यों को बीच सहयोग मित्रता पारस्परिक समाज और अखंडता का प्रतीक है। आज के समय में जब दुनिया अनेक वैचारिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, राष्ट्र एकता का महत्व और बेहद बढ़ जाता है। ये उस मजबूत स्तंभ के समान है जिसके आधार पर एक सशक्त राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तजिकिस्तान गणराज्य में राष्ट्र एकता का विशेष महत्व है। देश में शांति और स्थिरता की स्थापना में राष्ट्र का नेता महामहिम मुअल्ली रहमान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनकी दूरदर्शिता, सही सोर दरार, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण विरोधी पक्षों का वर्तों के मेज पर लाया गया और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्र एकता के राज्य निर्माण को सुदृढ़ करने में भूमिका के बारे में फिलोलॉजी के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल तोजोदा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
1: पेशवाई मुअज्जम मिल्लत बरोय रसीदन बा सुलह सलाह किश्वर अस तमाम उन इम्कानियत होए कि बरोय एक मिल्लत बरोय एक दौलत बरोय एक जमीयत
0: राष्ट्र के महान नेता ने देश में शांति स्थिरता और राष्ट्र मेल मिलाप स्थापित करने के लिए उन सभी अवसरों और शांतिपूर्ण उपायों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जो किसी राष्ट्र की एकता और राज्य के मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें निरंतर प्रयासों, दूरदर्शी नेतृत्व और सुदृढ़ राजनीतिक शक्ति के कारण तजिक राष्ट्र कठिन परिस्थितियों से उबर कर राष्ट्र सौभाग्य और एकता तक पहुंच सका। आज देश का प्रत्येक नागरिक इस शांति और स्थिरता के पहल को अपने जीवन में महसूस कर रहा है। आर्थिक विकास, सामाजिक क्षेत्रों के प्रगति, महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तजिकिस्तान के बढ़ते प्रतिष्ठा, यह सभी राष्ट्र एकता और शांति के वातावरण में ही संभव हो पाए हैं। इसलिए राष्ट्र एकता की रक्षा और उसे और अधिक सुदृढ़ बनाना प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। हम इस अनमोल उपलब्धि को अपने अंकों को तारे की तरह संरक्षित रखना चाहिए और आने वाले पीढ़ियों तक इसके विरासत पहुंचानी चाहिए। राष्ट्र एकता स्वतंत्र तजिकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। शांति स्थिरता और सामाजिक एकजुटता के कारण है राष्ट्र राज्य व्यवस्था के नींव मजबूत हुई है तथा आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। आज तजिकिस्तान एक संप्रभु और विकासशील राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेषता पहचान बना चुका है और इस पराक्रम में राष्ट्र एकता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस अमूल्य उपलब्धि की रक्षा और उसे और अधिक सुदृढ़ बनाना प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। केवल आपसे समाज, सहयोग और एकजुटता के वातावरण में ही हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्र एकता, शांति और स्थिरता के से भी राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है। केवल शांति, सहयोग और पारस्परिक सम्मान के वातावरण में ही समाज आगे बढ़ सकता है, अपने राज्य व्यवस्था को मजबूत कर सकता है और नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की परिस्थितियां बना सकता है। तजिकिस्तान के लोगों के लिए राष्ट्र एकता केवल एक सामाजिक मूल्य नहीं बल्कि एक महान ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र और राज्य मूल्यों का सम्मान करे तथा समाज में सद्भाव, सहयोग और एकजुटता को بر

प्यारे सुनने वालों, आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। भारत में जलालुद्दीन बल्खी के रचनाएं मशहूर है और ये है हमारे इस समय के विषय। मौलाना जलालुद्दीन बल्खी की कविताएं आदमी को भीतर तक घन गालती है। ये रसीली कविताएं ज्ञान रशि का संचित कोश है। आध्यात्मिक भावों का प्रकट करने वाले निर्दोष कविताएं हैं। अनेक संवेदनाओं से भरे हुए मनुष्य के मानस पटल में आध्यात्मिक संवेदना का अभाव निश्चित ही एक प्रकार का खालीपन पैदा करता है। बल्खी के साहित्य में ये जादू है कि वो इस शून्य में आध्यात्मिकता का ऐसा बिंद खड़ा करता है जिसके इर्द गिर्द बाकी संवेदनाएं इसी के प्रतिबिंब लगने लगती है। फारस देश के बल्ख में सन 1207 में जन्मे मौलाना जलालुद्दीन बल्खी के 100 गजलों का हाल ही हिंदी अनुवाद हुआ है। फारस सरकार के आर्थिक सहयोग के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा तथा राजकमल प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान में इसका प्रकाश निशब नपुर के रूप में हुआ है। इस अनुवाद का नाम आपने आप में संगम है जिसमें मुखरता भी है और मौन भी है। ऐसा ही अजूबा ये अनुवाद है जिसमें बल्खी का बरसों पुराना फारसी खजाना पहली बार हिंदी में उतरा है। पुस्तक को रुचिपूर्ण बनाने के लिए बल्खी के मूल फारसी गजलों को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया है, फिर उनका हिंदी अनुवाद दिया गया है। गजलों में प्रयोग छंदों को ईरानी तथा भारतीय काव्य शास्त्र की पारंपरिक रीति के गण निर्देश के साथ स्पष्ट किया गया है। मूल गजलों का फारसी लिपि में रखा गया है। जो फारसी पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके लिए पुस्तक के अंत में फारसी काव्य को समझने के महत्वपूर्ण सुझाव है। पुस्तक में फारसी व्याकरण भी जोड़ा गया है तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। कह सकते है कि इस तरह शब्द नुपुर सिर्फ अनुवाद न होकर बल्खी को जानने और समझने के लिए बड़े काम की पुस्तक है। बल्खी की कविता मसनवी आध्यात्मिक दुनिया में बेहद प्रसिद्ध है, पर उनकी गजलें मसनवी की तुलना में कम जानी जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दीवान शम्स में संकलित बल्खी के गजलों प्रेम और रहस्यवाद की अनूठी संपदा है। इनके प्रत्येक गजल का प्रत्येक शेर परिपूर्ण है। बल्खी ने प्यार के महासागर में उतर कर कविताएं लिखनी शुरू की है। उनकी कविता काव्यात्मक चमत्कारों तक सीमित नहीं बल्कि ज्ञान की परमागहर आत्मा में स्पंदन पैदा करती है। उनकी कविता सादिया भी है और साधन भी। बल्खी की कविता प्रेम और भाव के रसागर में भीगी हुई है। वे एक साथ दो काम करती है, खुद मौन रहती है और पाठकों की आत्मा में जानकार पैदा करती है। बल्खी के सरस कविता भाव और महाभाव की है, वे परां विश्राम तक ले जाती है। बल्खी का कविता विवेक आपद आपद मस्तक है, जो जर जो जत से पूरे चेतन तक से जोड़ने का सामर्थ्या रखता है। ये खासियत बल्खी को दूसरे कवियों से भिन्न बनाती है। इसी नाते बल्खी के बारे में एक प्रचलित कहावत है, वे शायर नहीं बल्कि साहिर यानी जादूगर है। इसलिए इनकी कविताएं सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि एक साधना है, उपासना है, अध्यात्म है। ये कविताएं आदमी को भीतर तक घन गलती है। वे रसीली कविताएं ज्ञान राशि का संचित कोश है। आध्यात्मिक भावों को प्रकट करने वाले निर्दोष कविताएं है। उनकी संवेदनाओं से भरे हुए मनुष्य के मानस पटल में आध्यात्मिक संवेदना का अभाव निश्चित ही एक प्रकार का खालीपन करता है। बल्खी के साहित्य में ये जादू है कि वो इस शून्य में आध्यात्मिकता का ऐसा बिंब खड़ा करता है जिसका इर्द गिर्द काफी संवेदनाएं इसी प्रतिबिंब लगने लगते हैं। ऐतिहासिक लक्ष्य है कि
بلخی نے مولوی سمپردائے بنایا تھا جسے انہوں نے سما مطلب ادھیاتم سے سرابور نریتیا کو بھی جوڑا تھا ان کی غزلین مکیتا دہف کتاب اور نایان بنسوری کے لائے پر گانے کے لیے ہے اس کارن ان غزلوں میں ارجا پروا سنگیت اتحوات لائے ہے جو دوسرے فارسی کویوں کے ساہتیہ میں درلاب ہے ان کی غزلوں میں الانکاری پریوگ یعنی قافیے آنت یا نپراس کے پریوگ انوٹھے ہیں جن سے بلخی کی کویتا آپ نے ایشوارش کے بل سے دوسری کویتاؤں پر اپنا پربھوت ستھاپت کر لیتی ہے ایسے میں بلخی کے لکھے چھندوں کے ساتھ انووت کی جگلہ بندی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر آلہ پر بے سرا اور بے تالا ہونے کا خطرہ ہے ملک سے دور چلے جانے کا خطرہ رہے پر برلام شکر نے اسے اتنی ساودھانی سے سادھا ہے کہ یہ انوواد سور اور تال کا سریلا سانگن بن گیا ہے انوواد اور مول میں سندر سامرسیا ستھاپت ہو گیا ہے انوواد میں بھی مول جیسا کتیا اور ویانجنتا ہے بلرام شکر دلی وشو ودیالیہ کے سانسکرتی وبھاگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے شکر کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی سانسکرتی ساہتیہ کے ساتھ ہی فارسی بھاشا پر مضبوط پکڑ ہے جو دوسرے سانسکرتی جانے والے لوگوں میں درلاب ہے ڈاکٹر شول کا فارسی غزلوں کا سنگرہ عشق و آتش ایران سے پرکاشت ہوئے ہے ان کے شودھ کا حصہ بھارتی گیان وگیان کے فارسی کرن سے جڑا ہے فارسی بھاشا کے ادھیتا کا نشب نپور بلخی کا پرتینیدھی سنسکرن نہ لگنے کا بجائے سوبھاوک انوواد لگے اس کا بلرام شوک نے پورا دہی رکھا ہے ساتھ ہی ان کا یہ ساہتیہ پریاس بلخی کو نہ جانے والے ہندی بھاشیوں کو بلخی سے ملوانے کے لیے بھی ہے پرستوت سنگرہ کے تین بھاگ ہے پہلا ہے باب طلب باب تراب دوسرا اور تیسرا باب وصال وش کے اتیان سمانیت ساہتیہکاروں میں بلخی مدھیہ ایشیا کے اس بہو بھاگ کا پرتینیدھت کرتے ہیں جہاں ششکتا میں بھی رس ہے وہ پوروی تتھا پشچاتیہ سانسکرتیوں کے ملان بندو ہے ایسے میں بلخی کے ساہتیہ کا پہلے سانسکرتی میں اور آپ ہندی میں انواد بھارتی کاویہ راسکوں کے لیے تاج کی بہارا ایوان نوتان سپاندانوں کو جاگرت کرنا والا ہوگا بلرام شکر نے سینکڑوں سال پرانے سانسکرتی کے ساتھ فارسی کی آتینتک نکتتا کو سپشٹ کیا ہے نشب نوپور کی پرستاونا میں ڈاکٹر بلرام شکر لکھتے ہیں فارسی کیول اس لیے بھارتی جان مانس کے نکت نہیں ہے کہ اس بہو بھاگ پر ایک بڑے کال کھن تک شاسن کرنے والوں کے دوارا اس راج بھاشا بنایا گیا تھا اتھوا بھارت میں ایک بڑی سنکھیا میں رہنے والے مسلم جان سنکھیا اسے اپنی سانسکرتی سے سمبندھت بھاشا مانتی ہے بلکہ بھارت کے ساتھ اس کے آتمیاتا کے اور بھی گہرے اور سوبھاوک کارن ہے اس ناطے فارسی کی ستھتی ہم بھارتیوں کے لیے انگریزی اتھوا عربی سے بہت بڑھ کر ہے بھاشا ویگیانک اتھوا نرت و شاستری اس بات کی گواہ ہی دیتے ہیں کہ ایرانی تتھا ہندوستانی مانو جاتی ایک ہی مول سے سمبند ہے دونوں سنسکرتیوں کی بھاشائیں اس میں بڑی پرمان ہے دونوں سمان مول سے نکلی بھاشاؤں کا پریوگ کرتے ہیں جس کے کارن دونوں سنسکرتیوں کے مانس میں ایک ارنیدش پرکار کے سنچاو کا انوبھاو دیتا ہے اگر ویکتی تھوڑی سی سنویدناشیل اکادمک دشتی کا پریوگ کر سکے تو اسے صدیوں میں ہوئے راجنیتی دھارمک یا بھوگولک پریورتنوں کے پار دونوں سنسکرتیوں کی ایکتا صاف صاف دکھائی پر جائے گی سنسکرت بھاشا کا اپنے مول پرکرتی اور سارے دمخان کے ساتھ سرکشت رہ پانا ساری مانوتا کے لیے ایک وردان کی طرح ہے سارے سنسکرتک اور دھارمک مہاتمیوں سے بھی بڑا اس کا یوگدان یہ ہے کہ یہ ہزاروں ورشوں میں بکھرے ٹوٹے مانوی اتہاس بھاشا
आशा और संवेदनाओं को फिर से जोड़ पाती है। विभिन्न समस्याओं में निकटता के कारणों को खोजती है। सभ्यताओं में प्रवाहित अनजानी आंतरिक प्रेम को अपने गवाहियों से प्रमाण पुष्ट कर देती है। संस्कृति का अध्ययन बहुरूपी लोगों के लिए आपने जड़ों की पहचान करवा कर उन्हें अद्भुत गंभीरता प्रदान करता है। संस्कृत के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि समिति धर्म से पूरी तरह परिग्रहित होने पर भी, अरबी लिपि में लिखी जाने पर भी, विदेशी शब्दों से 25% से भी अधिक मिश्रित हो जाने पर भी फारसी भाषा भारतीयों से कितनी अधिक निकट है। फारसी भाषी जनता के विचारों तथा मानस की भारतीयों की असामान्य निकटता इसी भाषिक निकटता के कारण प्रेरित है। बल्खी की कथा और कविताओं को संस्कृत अनुवाद कर चुके अर्चाय राथ वल्लभ त्रिपाठी निशब नुपुर को विलक्षण कर्या कहते हैं। सन 2011 में संस्कृत भारती से प्रोफेसर राथ वल्लभ त्रिपाठी की दो किताबें आई थी। त्रिपाठी कहते हैं कि मेरे अनुवाद का आधार बल्खी के अंग्रेजी में अनुदित कविताएं और कथाएं थी। प्रोफेसर त्रिपाठी बलराम शुल्क के काम को महत्वपूर्ण आंकते हैं। उनका कहना है कि बलराम शुल्क फारसी भाषा के अध्येता है, इस नाते उनके अनुवाद की स्रोत भाषा फारसी। त्रिपाठी आगे कहते हैं कि हिंदी में आपने दांग का यह पहला कार्य है, अभी तक ये पहला कार्य है। अभी तक हिंदी में बल्खी पर ऐसा काम देखने को नहीं मिला, ये प्रामाणिक कार्य है। इसका हिंदी का पाठकों का विश्व साहित्य के बड़े कवि को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ईरान में कव्य विलक्षण है, उसमें बल्खी के लंबी लंबी कविताएं निःशब्द नूपुर से भारतीय भाषा के पाठकों का बल्खी और उनकी बड़ी कविताओं से परिचय होगी। हर एक भाषाई साहित्य में जैसी खुद की प्रेरणा होती है, ठीक वैसी ही फारसी कविता में भी। फारसी कविता की ऐसी ढेरों रूढ़ियों है जो भारतीय मानस को विचलित करती है। इसलिए निःशब्द नूपुर का एक आधार भारतीय पाठक की काव्य रुचि भी है। तभी तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर ने निःशब्द नूपुर के लिए ठीक लिखा है। डॉक्टर बलराम शुल्क द्वारा कई तरह के प्रामाणिक तथा मूल फारसी स्रोतों से सहस्राधिक गजलों का पारायण करने के बाद उनके माध्यम से 100 ऐसी गजलों का चुनाव किया गया है जिनका अनुवाद संभव हो सके तथा अनुवाद के बाद वे भारतीय जनमानस के लिए आस्वादन की दृष्टि से उपयुक्त हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर उमेश नेपाल बल्खी के ताजा अनुवाद को नया साहित्यिक संपदा मानते हैं। उनका कहना है कि विश्व के अत्यंत सम्मानित साहित्यकारों में बल्खी मध्य एशिया के उस भूभाग का प्रतिनिधित्व करते है जहां शुष्कता में भी रस है। वे पूर्वी तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के मिलान बिंदु है। ऐसे में बल्खी के साहित्य का पहले संस्कृति में और आप हिंदी में अनुवाद भारतीय काव्य रसियों के लिए ताज गिभारा एवं नूतन स्पंदनों को जागृत करने वाला होगा। संवेदनाओं के संघर्ष के युग में पारस्परिक संवेदनाओं का अनुभव एवं आस्वादन कराने का ऐसा प्रयास हर भाषा के साहित्यविद को करना चाहिए। निःशब्द नूपुर उनके लिए एक उदाहरण है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी मौलाना जलालुद्दीन बल्खी की रचनाओं के अनुवाद भारत में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहिए।